0: कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गंगापुर सिटी। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों, आज फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के साथ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है नसिया कॉलोनी में डीएस साइंस अकेडमी।

0: दियास।
1: यस सर, नाम बताएं आपका।
0: गीतारामपुर से डिस्ट्रिक्ट जानना महाराष्ट्र। कैसे हैं सर आप?
1: हम सब बहुत अच्छे हैं सर, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मजे में अच्छे सुरक्षित है सर। हमारे इधर तो जिले के अंदर मामूली मामूली बारिश हो गई सर।
1: बहुत अच्छी बात है सर, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है फिलहाल। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप रेडियो डीएस से?
0: रेडियो डीएस से मुझे सुनना है प्यासा सावन, मेघा रे मेघा मत परदेसी जा, ये गाना सुनना है सर मुझे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से रेडियो डीएस में कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं। सना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी, कॉलोनी।
0: बताएं सना जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सुरमेदानी।
0: हाँ जी,
1: सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सना जी, आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन, शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: जी नाम बताएं।
5: गुलशन।
4: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर सिटी।
4: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: सिस्टम पे सिस्टम, भिखारा छोड़ा जाट का।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: सर सिस्टम बिचारा छोटा है जी।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
2: फिल्म का नाम है हाथ की सफाई और गाने के बोल है वादा कर ले साजना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-1311.
1: Hello.
2: Ji, naam bataye.
1: Namaste. Meena.
2: Haan ji.
1: Preeti Meena.
2: प्रीति मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी.
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: थोड़ी देर.
2: हाँ जी,
1: थोड़ी देर.
2: थोड़ी देर.
1: हाँ जी भैया,
2: ठीक है, सुना रहे हैं प्रीति जी आपको आपकी फरमाइश का सॉन्ग. रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद.

0: राहुल सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे प्यारे डैडी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपके समय।

0: बताएं सर।
1: शिवम मीणा।
0: शिवम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सादे की से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: घूर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਯੋ ਗੁੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥਾ ਬਾਬੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: सर मीनाक्षी गुप्ता।
2: मीनाक्षी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर से।
2: बताएं मीनाक्षी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: हैंगओवर।
2: हैंगओवर?
3: हाँ सर।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं, मैं आपकी फरमाइश करता हूँ।
3: सिक्स

0: हेलो जी, नाम बताएं सर।
1: राधा सैनी।
0: राधा सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं राधा जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: किसी से अब क्या?
0: हाँ जी,
1: किसी से अब क्या कहना?
0: किसी से अब क्या कहना सुना रहे मैम आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: सूर्य सिंह
2: तवर जी।
1: सूर्य सिंह तवर
2: कहाँ से बात कर रहे हैं सूर्य सिंह जी?
1: करौली से।
2: करौली से बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बड़ी मैन पास काम कर।
2: हाजी
1: बड़ी मैन पास काम कर।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनाई पड़ेगी।

0: बापू तने खूब कमाया मेरे अच्छे दिल ल्याण खातर
1: तो
0: और मेरी माँ के।
2: हेलो
1: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आगे सुनना है, पिक्चर का नाम है तेरी कसम और गीत के बोल है हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थे पीर खड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: जी मैं राजू यादव, ग्राम प्रियंका, सीराम मुंडेरा, सरीला राठ, मुस्करा हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
1: राजू जी कैसे हैं आप सर?
0: हम तो सर जी बढ़िया हैं। आदरणीय आरजे ऋषि मीणा जी, आप कैसे हैं और बहन पलक कैसे हैं?
1: हम सब बहुत अच्छे हैं सर, आपका आशीर्वाद है। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डी से?
0: रब से चली पुरवाई की छम छम बोले।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
0: सईद खान।
1: सईद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: दिल वालों की बस्ती है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: ममता
0: जी,
1: ममता गुजर।
0: ममता गुजर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हेलो
1: सुना
0: जी,
1: आ बलमा नदिया के किनारे
0: सुना रहे मैम आपको।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:01 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका?
0: मुस्कान।
1: मुस्कान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: वो है ना, मैं दीवाना दीवाना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन,
1: 89.6 रेडियो।
3: हेलो।
4: हाँ
3: जी, नाम बताएं सर।
4: बिस्मत सैनी।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: मैं सिया कॉलोनी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
4: कॉलेज वाली। सर
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी, तो मैं इसका ही सॉन्ग।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6
2: शहर
0: की धुन।
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
1: रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगा।
2: चिराग जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गन्ना करके पीछे
2: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: मीना जी का सिस्टम।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ही सुनो।

0: डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
1: हाँ जी सर, सर सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल बेटा, पलक बेटा, प्यार दस्तकार पर ये सत श्री अकाल भाई बापा नाम से सत श्री अकाल जी।
1: हाँ जी सर, पहला आपका पूरा।
0: हाँ जी हाँ जी जो हाँ जी हाँ बेटा हाँ जी, मैं जी पिंड मौड़कोट दा जिला बठिंडा तो पंजाब तो भाई जी जी मट्टू बोलदा भाई।
1: हाँ जी सर, और कैसे हो?
0: ठीक ठाक भाई, तुसीं दसो भाई थोड़े गंगापुर दा राजस्थान दा की हाल है भाई?
1: सर राजस्थान का ये है कि बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, अब तो थोड़ी धूप निकल रही है, मौसम भी होता है सुबह शाम पर तो बरसता नहीं है।
0: अच्छा भाई, साडे तां भाई पंजाब च हाली हो नहीं रही बारिश।
1: हाँ सर, थोड़ी इधर हुई थी अभी कुछ दिन पहले। अच्छा। अब नहीं हो रही सर, अब तो गर्मी हो रही है, 32 डिग्री वो चल रहा है टेम्परेचर।
0: चल बेटा तुसी आपकी सेहत का ख्याल रखो भाई, पानी का नहीं बद पिया करो, ठीक है ना?
1: हाँ जी सर, गाना बताओ।
0: गाना बेटा एक ना पुरानी फिल्म 1971 दी।
1: हाँ जी बताइए।
0: हाँ बेटा वो क्यों रहेगा जी, आप आए बाहर आए
1: गाने के बोल सर।
0: गाने के वे बोल बेटा, मोहम्मद रफी साहब जी ने तो पहला जी ने गाया, गुनगुना कर बताऊं बेटा?
1: हाँ जी
0: हाँ बेटा बताता हूँ।

0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बड़े बड़े सर जी को बेटा बीमा जी को मेरे साथ श्रीकाल बुला रही बेटा, ठीक है ना
0: सर? मैं बोल दूंगी उनको भी।
1: ठीक है बेटा, चंगा भाई, पापा नाम सत श्रीकाल बेटा, सत श्रीकाल।

0: सुई गाल बेटा रत्री।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आपका नाम क्या है? आपका
2: गुरुवाई ठाकुर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मोगा।
1: तर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: वो गाना है कबूतर जा जा, पहले प्यार की गली लगती।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नाम क्या है आपका?
1: गोली मात्रा से चंदू जवादी बोल रहा हूँ दीदी।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मुझे सुनना है फुलार काटे का।
0: गाने के बोलिए, इसमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवे जी से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो बहुत बढ़िया लगा है।
1: हाँ जी बताइए सर।
0: दो पंछी दो तीन के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, जल्दी सुना दें।
1: ओके।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मैम, मेरा नाम सोहेल खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आके ताली वाली।
1: ओके सर, सुना दूँ आपकी फरमाइश करिए गाना। वेलकम।
2: पतली पतली

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो,
4: नमस्ते
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
4: सैयद खान पुराने नियम।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: बाबरी की दुआएं लेती
3: हूँ। सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या आपका?
1: आयुषी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नवरापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं थारे पाँव की जुत्ती।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे, हम सांप के साथ सोते थे।
1: इन्होंने दिल्ली कर जाना।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हर बीट में
4: नाम क्या है आपका?
5: अम्मार खान।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सा गाना सुनना चाहिए?
5: मासूम शर्मा।
4: ओके सर, सुना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: जी सर, मेरा नाम सुंदर बोल रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने के बोल है मेरी बिंदिया तेरी बिंदिया माँ बाप।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना
0: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पवन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मातृ शर्मा बदमाश जानता
0: हूँ। कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: मेरा नाम इसलोक सिंह राजावत।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगापुर सिटी मोकला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैं क्या है ये, क्यों है ये, बड़ा अच्छा लगता है वो वाला।
1: ओके सर, सुना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मनोज मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परी गाना

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।
1: मैडम हेलो।
2: हाँ जी राम, क्या आपका?
1: अग्रवाल
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बैरन।
2: बैरन

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैं चाहता हूँ तुझको दिल और जान की तरह।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ दीदी, राधे राधे।
0: दीदी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम समता जादौन, वार्ड कला से बोल रहे हैं।
0: दीदी कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी बोली भाली जाना रुक जाना।
0: दीदी सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: थैंक यू दीदी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: नहीं,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: चंदा में भी दिखे तेरा फेस।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: कर रही?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जब तुम बुलाओ तो नदिया के नारे।
0: ओके तो सुना रहे आपकी सरवाइव।

0: दोस्तों हेलो फरमाइश, कार्यक्रम का समय यही समाप्त करते हैं और कार्यक्रम अगला लेकर हाजिर होते हैं थोड़ी देर में।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुनेंगे थोड़ी देर में कार्यक्रम नए तराने। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
0: शहर का नया मैजिक। रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS।

0: 106 पे रेडियो
1: डीएस हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षित अध्यापक अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज कंप्यूटर लैब साइंस लैब आदि सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ संगीत नृत्य चित्रकला खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण स्कूल बस वाहन की व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है वर्तमान में एडमिशन ओपन है स्कूल का पता
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर क्षेत्र गंगापुर सिटी सवाई माधव
4: आपने अक्सर देखा होगा कि पुरुषों के बाल एक खास पैटर्न में झड़ते हैं पहले माथे के दोनों कोनों से हेयरलाइन पीछे जाती है फिर सिर के बीच यानी क्राउन एरिया में एक चांद सा बन जाता है लोग इसे सिर्फ आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का नाम देते हैं लेकिन क्या हो अगर आपके पिता दादा या मामा के सिर पर घने बाल हों यानी आपके डीएनए में गंजापन हो ही नहीं फिर भी आपके बाल तेजी से झड़ रहे हों ट्राइकोलॉजी की दुनिया का कड़वा सच ये है कि आज लाखों पुरुष बिना किसी जेनेटिक इतिहास के भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं आखिर पुरुषों के शरीर और लाइफस्टाइल में ऐसा क्या बदल रहा है जो उनके बालों की जड़ों का दुश्मन बन बैठा है अगर बात जेनेटिक्स की हो तो असली मास्टरमाइंड होता है डीएचटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है जिन पुरुषों के जीन्स में गंजापन होता है उनके सिर के ऊपरी हिस्से के हेयर फॉलिकल्स बालों की जड़ें इस डीएचटी के प्रति हद से ज्यादा संवेदनशील होते हैं ये हार्मोन जड़ों से चिपक कर वहां खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है विज्ञान की भाषा में इसे फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन कहते हैं जिससे मोटा बाल धीरे धीरे पतला होकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है चूंकि सिर के पीछे के बालों में इसके रिसेप्टर्स नहीं होते इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे के ही बाल आगे लगाए जाते हैं लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े ट्विस्ट पर जहां आपके डीएनए में गंजापन नहीं है फिर भी सिर खाली हो रहा है विज्ञान कहता है कि इसके पीछे तीन नए आधुनिक विलन है पहला है टेलोजन एफ्लुवियम जो भयानक मानसिक तनाव किसी गंभीर बीमारी या क्रैश डाइटिंग की वजह से होता है जब आप हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो आपके बढ़ते हुए बालों को जबरन आराम की मुद्रा में धकेल देता है जिससे अचानक गुच्छों में बाल टूटने लगते हैं दूसरा बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की गंभीर कमी विशेषकर विटामिन D3, B12, आयरन और प्रोटीन बालों की जड़ें केराटिन नाम के प्रोटीन से बनती हैं अगर शरीर को ये रॉ मटेरियल अंदर से नहीं मिलेंगे तो जड़ें अंदर ही अंदर दम तोड़ देंगी और तीसरा विलन है आपकी लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग जो सिर की बारीक नसों को सिकोड़कर ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देती है और शहरों का हार्ड वाटर जो स्कैल्प पर मिनरल्स की परत जमा कर जड़ों को चोक कर देता है विज्ञान का यह सच साबित करता है कि मर्दाना गंजापन सिर्फ जीन्स का खेल नहीं है आपकी बदलती लाइफस्टाइल और अंदरूनी सेहत भी आपके बालों की किस्मत तय करती है
1: यानी सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
4: सुबह उठते ही एक कप गर्म चाय या कड़क कॉफी इसके बिना करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती शरीर में जाते ही ये सुस्ती को गायब कर देती है मूड फ्रेश कर देती है और ऐसा लगता है जैसे बॉडी में कोई रॉकेट फ्यूल डल गया हो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ताजगी असली है या आपका दिमाग आपको एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है विज्ञान की दुनिया में चाय और कॉफी को लेकर एक बेहद हैरान करने वाला सच सामने आया है ये कोई साधारण रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है बल्कि एक ऐसा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है आखिर क्या है इसका असली सच क्या ये शरीर के लिए एक वरदान है या फिर रगों में धीरे धीरे घुलता हुआ एक धीमा जहर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है एक केमिकल जिसे हम कैफीन कहते हैं जब आप दिन भर काम करते हैं तो आपके दिमाग में एडिनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है ये केमिकल जैसे ही अपने रिसेप्टर से जुड़ता है आपके दिमाग को थकान और नींद का सिग्नल मिलता है लेकिन जैसे ही आप चाय या कॉफी पीते हैं, कैफीन खून के रास्ते सीधे आपके ब्रेन में पहुंचता है और इन एडिनोसिन रिसेप्टर्स पर खुद जाकर बैठ जाता है। यानी कैफीन आपकी थकान को मिटाता नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को यह महसूस ही नहीं होने देता कि वो थका हुआ है। ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ किया गया एक तगड़ा साइंटिफिक फ्रॉड है। जैसे ही रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, शरीर अलर्ट मोड पर आ जाता है और दिमाग कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन और एड्रेनलिन को अचानक बढ़ा देता है। इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे आप एनर्जी समझते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आप इसे सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं। खाली पेट कैफीन पेट के अंदर खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCL के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को एसिडिक बनाकर अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और अगर आप इसे शाम 6 बजे के बाद पीते हैं, तो ये आपकी गहरी नींद यानी REM स्लीप को पूरी तरह तबाह कर देता है। तो क्या चाय और कॉफी वाकई एक धीमा जहर है? जवाब है बिल्कुल नहीं, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल एक लिमिट में करें। लिमिट में ली गई चाय या कॉफी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रात को रोता है तो लोग कहते हैं कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन इसके पीछे का सच आपको हैरान कर देगा। कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना तेज होती है। उनके कान बहुत दूर और बहुत हल्की आवाजों को भी पकड़ लेते हैं। रात की शांति में वे ऐसी आवाजें सुन सकते हैं जो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इसी वजह से वे कभी कभी बेचैन होकर रोने या हूंकने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई कुत्ता रात में रोए तो डरिए मत। हो सकता है वह सिर्फ उन आवाजों और बदलावों को महसूस कर रहा हो जिन्हें इंसान अभी तक महसूस भी नहीं कर पाए हैं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
4: 5 सेंटीमीटर मोटी त्वचा, फिर भी गैंडा गोली से नहीं बच सकता। देखने में गैंडा एक टैंक जैसा लगता है। उसकी त्वचा कोलाजन फाइबर से बनी होती है जो फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं। ये त्वचा उसे कीड़ों और झाड़ियों से बचाती है लेकिन तेज रफ्तार गोली से नहीं, क्योंकि बुलेट की स्पीड 900 मीटर प्रति सेकंड होती है जो उसकी मोटी त्वचा को आसानी से पार कर जाती है। और उसकी त्वचा के नीचे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी नहीं होता, इसलिए बाहर से मजबूत दिखने वाला गैंडा अंदर से वल्नरेबल होता है। 5 सेंटीमीटर मोटी त्वचा, फिर भी गैंडा गोली से नहीं बच सकता।

0: सिटी का स्वैग 89.6 पे
1: रेडियो डीएस। हर बीट में है शहर का कमाल, हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
5: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है दो बच्चों के, इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन 89.6।

0: हिट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी।

0: नियर सैनिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे मैक टू वे गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: अरे उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं,
1: लेटे रहो, लेटे रहो, जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही हूँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। अरे यार, तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:09 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग खुल चुकी है और आप कॉल कर अपनी फरमाइशों पर

0: 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएसए

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे रेडियो DS।
0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम के पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: हल्दीराम गुजर बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गाँव के दरिया से बोल रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये है, हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है।
1: हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है।
0: जी जी
1: सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: सर नाम क्या है आपका?
1: विनोद कुमार सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी मऊकला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: अफसाना बना के भूल ना जाना, इमरान हाशमी का सॉन्ग है।
0: ओके सर, सुना।

0: वातावरण गर्म होने लगा, फिर तापमान 36-38 डिग्री जा रहा।
1: हाँ सर, ये इस बारे।
0: हाँ। और फिर क्या है, उमस वाली गर्मी बढ़ जाती है।
1: हाँ सर, वो तो है ही।
0: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मारे ही बड़म नाचे मोर थकथई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: यू वेलकम सर।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अकमल खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: उदय।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सनम रे।
1: ओके सर।

0: हेलो
1: हेलो मैम जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जारे कारे बदरा बलम के पास।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आप
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: ये भवानी सर, नाम क्या है आपका?
1: विमल शर्मा, मऊ कला, गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
1: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: गुलशन।
3: कहाँ से बात कर रहे
4: हो? गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: लाल लाल बांगड़ी सॉन्ग।
3: लाल लाल बांगड़ी सॉन्ग,
4: हाँ नया गाना चला है ना अभी।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। हेलो
5: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
5: धीरज गुजर।
3: कहाँ से बात कर रहे
5: हैं?
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
5: गाड़ी 150 बजा रखी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: आपका
1: नाम आमीन साहब ही बोलिया
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: क्यों आप?
1: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मनिका।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: फिटे सूट पर दाग पे गए।
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विवेक कुमार मामी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर पे।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कमर तेरी लेफ्ट राइट हैंड।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
2: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: शहर की धुन
1: यहाँ रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

हर हर महादेव शंभु। आज के इस भजन की एक एक पंक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सूत्र है। इस संगीत के माध्यम से हमने शिवत्व के उस गहरे दर्शन को छुआ है जो हमें निर्भय बनाना सिखाता है। पहली सीख है अटूट विश्वास। प्रह्लाद की कथा हमें

मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आती हैं। दूसरी सीख समर्पण और धैर्य। समुद्र मंथन का हलाहल महादेव ने पिया, जो हमें सिखाता है कि जीवन की कड़वाहट को बिना विचलित हुए स्वीकार करना ही असली योग है। जब हम अपनी सारी चिंताओं को महादेव की झोली में डाल देते हैं तो हम भविष्य के अनजाने डर से मुक्त हो जाते हैं। रावण का अहंकार

अंतिम और सबसे बड़ी सीख है स्वार्थ का विसर्जन। दधीचि की तरह जब हम मोह और मैं का त्याग कर देते हैं तभी हमारे भीतर वज्र जैसी शक्ति पैदा होती है। याद रखिए, हम उस महादेव के अंश हैं

राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।